0: अध्यक्ष देवराज प्रपन्नाचार्य, उपाध्यक्ष तथा इलाका महिला सभापति चित्रा गिरी, सदस्यहरू माया सुवेदी, हरिकला खनाल, निर्मला बोहरा, देवी खनाल र नबिना केसी।
1: योग गरौं, स्वस्थ रहौं।

सवरी तीनो सर भगवान राम ताही देही मति राम उधारा सवरी आश्रमा प्रभु विपव गिरधारा। भगवान को चरण सवरी को आश्रम रह सवरी ले देखे की थी न भाई भौतिक रूप लाई सवरी ले देखे की थी न तरह कसरे चिन्हिन की मेरो प्रभु हो तब ताई दे मति राम उधारा सवरी आश्रम प्रभु विधारा। सवरी देखी राम गृह आये मुनि के वचन समझे संत हरले तो दिए को आशीर्वाद संत हरले तो दिए को प्रेरणा तो भगवान को नाम को द्वारा सवरी को कुटी माँ भगवान पुगेरा सवरी लाई दर्शन दिन भयो। सर सज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट और सिरवन माला भगवान राम जटा थियो त्यहाँ अति सुंदर फूल को माला हरू शोभित थियो। सवरी ले चिनिन मेरो प्रभु आउनु भयो अति सुंदर पवित्र पानी ल्याएर चरण धुन्छी। आज हामीलाई नमस्कार गर्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ लाज लाग्छ तर भगवान राम को चरण धुन्छी। सादर जलै चरण पखारी सादर पवित्र जल ल्याएर चरण धुन्छी अति सुंदर कुशासन दिन्छिन। अब के दिउ घरमा आएको प्रभुलाई भगवानलाई कसरी खाली पठाऊ बिचरे गरी तैले देखी उनले बहेर राखेकी थिइन ते बहेर भगवानलाई भोग लगाउँछ भगवान रामले त्यो भोग बहेर को खानुहुन्छ अति सुंदर अति मिठो सवरी यति मिठो।